0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है। हकीकत यह है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। मदद कर सकता है,
1: दूसरा तर्जुमा यह भी हो सकता है कि रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बना हुआ तुम्हारी दस्तगिरी करता हो। हमने मतन में जो तर्जुमा किया है वो आगे के फिक्रे से मुनासिबत रखता है और इस दूसरे तर्जुमे की मुनासिबत पिछले सिलसिले कलाम से है।
2: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ

0: इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो।
1: यानी अल्लाह ने तो तुम्हें इंसान बनाया था, जानवर नहीं बनाया था। तुम्हारा काम ये नहीं था कि जो गुमराही भी दुनिया में फैली हुई हो उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो, और कुछ न सोचो कि जिस राह पर तुम जा रहे हो वो सही भी है या नहीं। ये कान तुम्हें इसलिए तो नहीं दिए गए थे कि जो शख्स तुम्हें सही और गलत का फर्क समझाने की कोशिश करे उसकी बात सुन कर न दो, और जो गलत सलत बातें पहले से तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई हैं उन्हीं पर अड़े रहो। ये आंखें तुम्हें इसलिए तो नहीं दी गई थीं कि अंधे बनकर दूसरों की पैरवी करते रहो और खुद अपनी बीनाई से काम लेकर यह न देखो कि जमीन से आसमान तक हर तरफ जो निशानियां फैली हुई हैं वो आया उस तौहीद की शहादत दे रही हैं जिसे खुदा का रसूल पेश कर रहा है, या ये शहादत दे रही हैं कि ये सारा निजाम कायनात बेखुदा है या बहुत से खुदा इसको चला रहे हैं। इसी तरह ये दिलो दिमाग भी तुम्हें इसलिए नहीं दिए गए थे कि तुम सोचने समझने का काम दूसरों के हवाले करके हर उस तरीके की पैरवी करने लगो जो दुनिया में किसी ने जारी कर दिया है, और अपनी अकल से काम लेकर यह सोचने की कोई जहमत गवारा न करो कि वो गलत है या सही। अल्लाह ने इल्म अक्ल और समात व बीनाई की ये नेमतें तुम्हें हक शिनासी के लिए दी थीं। तुम नाशुक्री कर रहे हो कि इनसे और सारे काम तो लेते हो मगर बस वही एक काम नहीं लेते जिसके लिए ये दी गई थीं।
2: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے،
1: یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر گوشے زمین سے گھیر لائے جاؤ گے اور اس کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔

फिर मैंने अर्ज किया दो तिहाई यानी टू थर्ड अपने टाइम का क्या मैं इतना दुरूद पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना तुम चाहो और अगर इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मैंने अर्ज किया वजीफे में पूरी रात आप पर दुरूद पढ़ा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तुख्फा हम्मक व युग़फ़रु लका ज़म्बुक, जब तुम हर वक्त मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते रहोगे अब ये दुरूद पाक तुम्हारे सब गमों के लिए काफी होगा और इससे तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये हदीस मुबारका सुनने तिर्मिज़ी शरीफ की अबवाब सिफत अल-क़ियामत व रिक़ाक व वरअ बाब मा जा फी सिफत अवान हौज हदीस नंबर 2457 सुनने तिर्मिज़ी शरीफ, जिसके अंदर हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया गमों का मदावा भी दुरूद पाक है, गुनाहों का कफारा भी दुरूद पाक है। फिर उसके बाद दुरूद पाक के फजाइल अनगिनत है। यह थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम नाकाफी है लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक के फजाइल को बयान किया जा सके। इसी तरह एक हदीस मुबारक जो सही मुस्लिम किताब उस सलात के अंदर है, हदीस नंबर 384 सही मुस्लिम शरीफ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने से रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा समितुम मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्लमा यक़ूलू सुम्मा सल्लू अलैया, कि जब तुम मुअज़्ज़िन को देखो वो अजान पढ़ रहा है जिस तरह वो अल्फाज की अदायगी कर रहा है उसके पीछे पीछे तुम भी अदा करो, फिर मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो। फ़इन्नहु मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, फरमाया जो मेरे ऊपर एक दफा दुरूद पड़ेगा अल्लाह 10 मरतबा उसके ऊपर रहमतों का नजूल फरमाएगा। सुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसीला, फरमाया कि फिर मेरे लिए वसीला तलब करो। फइन्नहा मंजिलतुन फिल जन्ना, वो जन्नत की एक मंजिल है जिसका नाम अल वसीला भी। ला तंबगी इल्ला लिअब्दिन मिन इबादिल्लाह, फरमाया जन्नत की वो मंजिल है जो मखलूके इलाहिया में से एक ही शख्स को मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ही इनायत हो। वह अर्जू अन अकून अना हुआ फमन साल अलियल वसीलत हल्लत लाउ शफा, जो शख्स मेरे लिए अल्लाह से इस वसीले की तलब करे उसके लिए मेरी शफात रोजे कयामत वाजिब हो जाएगी, हलाल हो जाएगी। हल्लत लाउ शफा, तो दुरूद पाक पढ़ना इसकी फजीलत यह है। अजान हो, अमूमन हम लोग बेहतियाती करते हैं, उधर से अजान हो रही तो गपशप लगा रहे होते हैं, इवन के टीवी पर भी अजान हो रही हो तो अगर वहां पर भी अजान हो रही है तो साथ साथ आप पढ़ते जाएं जो कलिमात वज़न अदा कर रहा है। तो जिस वक़्त हय्याल सलाह हय्याल अल-फलाह कहें तो उस वक़्त ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम, लेकिन बाकी जो अल्फाज हैं अजान के उनको इसी तरह अदा करें। और फजर की अगर अजान हो उसके अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नून के, तो उस वक़्त कहे सदकता व बररता व बिलहक नतकता। इसी तरह बेशुमार फजाइल हैं दुरूद पाक के। एक हदीस मुबारक जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में किताबुल फजाइल के अंदर है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लु अलैया फ़इन्न सलातन अलैया ज़कातुन लकुम, कि मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद भेजना ये तुम्हारी पाकीज़गी का सबब है, अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों को पाक करते हैं। इसी तरह सुनने तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर अबवाबुल वित्र के अंदर बाब मा जा फी फ़ज़्ल सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 484, उसमें नबी करीम

अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: When life gets busy
1: and when family life gets complicated,
0: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
1: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
0: A show bringing real conversation, practical advice.
1: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.

0: have to give. Give a little of yourself.
1: अगर आप कम्युनिटी के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इंस्पायर एफएम की टीम से आज ही रابطہ कीजिए. इंस्पायर एफएम पेश करता है कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स.